0: ना निदान बख्शनहारा है, छोड़कर दम्भ और घमंड, शरणागत उसका बन ऐ इंसान। करके पाप तू ऐ मूरख, करके पाप तू ऐ मूरख, क्यों इतराता फिरता है? करके पाप तू ऐ मूरख, क्यों इतराता फिरता है? क्यों मजलूम पर जुल्म कर गर्त में जा गिरता है? समझता है खुदा खुद को, बेजुबा को सताता है। क्यों खोदता है कब्र अपनी, खुद ही कफन अपना सिलता है। गुजरते वर्ष के साथ गुजरता वक्त गुजर जाए, गुजरते वर्ष के साथ गुजरता वक्त गुजर जाए, गुजर गया जो वक्त ना फिर वो लौट कर आए। उठाकर हाथ अपने सजदे में झुकाकर सर अपना, उठाकर हाथ अपने सजदे में झुकाकर सर अपना, दुआ करो अब के बरस खुशियों भरा हर एक पल आए। दुआ करो अब के बरस खुशियों भरा हर एक पल आए। धन्यवाद।
1: शर्मा जी तों बाद एक मैं होर कुछ साखी करने गया। एक साडे शायर ने फिरोजपुर तों कमल दास जी, वो भी अपनी एक रचना लेके हाजिर हो रहे ने। कमल दास फिरोजपुर जी, थोड़ा दुआबा रेडियो दे हफ्तावारी कवि दरबार दे विच निघा स्वागत है जी आया।
2: जिंदगी

सफर आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये के

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम मना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम मना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये

जिस दिन चुप तू हो जाएगा, इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये

लगती सही, कहा दास को मत घबराना, हंसते गाते दिन बिताना। कहा दास को मत घबराना, हंसते गाते दिन बिताना।

के अड़या लोक मार दे ताने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर हिजर दे सजना, तेरे तीर हिजर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस किसे भी इश्क कमाया पले पे जुदाई, अपने आप दी होश रहे ना दुश्मन बने लकाई। जो दुनिया पत्थर मारे असी ओ भी हस हस खा बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। इश्क दी पौड़ी पैर टका के

चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया संदूक।

सब दरिया खेस घबराए सी, वेलां बूटे माने चावा नाल पाए सी, गद्दे बैड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया, हर कपड़ा सी रो रो के बोलिया।

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, तेरिया लाडलियां पर

मामे मासियां भूआ रोवण तेनू बरावण चाची ताई। मामे मासियां भूआ रोवण तेनू बरावण चाची ताई। भैन ने आनी बकरी पारोवे, भैन ने आनी बकरी पारोवे, जांदी नहीं बराई। चाचे ताए बाबल तेनू अणखां दी गठ फड़ाई। सोरे घर जातीए कर लई फर्जां दी कमाई। जा सोरे घर धीए लै जा लट्टां भरी विदाई। जा सोरे घर धीए लै जा लट्टां भरी विदाई।

होई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई, जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की, पटोलियां दी खेड मुक्की, वीरां संग रोक मनाई।

इस मिट्टी दे उत्ते खड़के तू कर दाए मनमानी, भला ना लोचे किसे दा बंदिया कर दाए नित हानी। मिट्टी सब कुछ चुप कर सहंदी रख दी।

0: हो उसनू टाइम देना पैंदा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी,
0: उहदे लई जो एफर्ट्स लगदियां हैं वो सब इस पेरेंटिंग दे विच आ जांदा है।
1: जी। तो ये अपने आप दे विच ही उम्र भर चलण वाला
0: हाँ
1: मापिया लई
0: जी
1: जिहड़ा काम है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ते एक दिन वाला काम नहीं हैगा जी।
0: हाँ जी
1: अज
0: हाँ जी
1: इहदे उत्ते गल हो गई ते खत्म हो गई
0: हाँ जी
1: ये तो जी। पर इहदा मतलब कि इहदे लई ते फिर किवें आपां इहनां नूं डिफाइन करांगे? हर बंदे दा अपना सुभाअ है,
0: हाँ जी
1: ते आपो अपने रूल, आपो अपने जिहड़े तरीके नाल अपने बच्चिआं नूं पालन पोषण उहनां दा करदे आ,
0: हाँ जी
1: ते कीड़ियां चीज़ां जिहड़ियां ने उह सब उभर के आउंदियां ने, किस तरह आपां कहिंदे आ टाइप्स इहदियां आ
0: हाँ जी
1: जांदियां
0: हाँ
1: ने
0: जी वैसे तो थोड़े बहुत फर्क दे नाल हर एक दा स्टाइल डिफरेंट है,
1: जी।
0: पर मुख्य तौर पे चार पेरेंटिंग स्टाइल्स गिने गए हैं
1: जी
0: जिन्हां विचों सब तो पहला जो अपने इत्थे आम चलता है जिसनों असीं कहने हैं अथॉरिटेरियन स्टाइल।
1: जी
0: अथॉरिटेरियन स्टाइल वो है जिस दे विच असीं बच्चों नूं अपना हुक्म मनन दी ही तालीम दिंदे हैं,
1: जी
0: मैं तेनू जो क्या बस।
1: ओके
0: हाँ
1: है, वो होना
0: वो
1: चाहिए
0: ओके
1: है,
0: है,
1: वो ही होना
0: जब
1: चाहिए
0: बच्चा क्वेश्चन करता है तो सानू लगता है कि वो अगे बोल रहा है, वो साड़ी इज्जत नहीं कर रहा, ये अथॉरिटेरियन स्टाइल है साड़े। असी
1: जी
0: उहदे नाल रीजनिंग नहीं करते, असी उहनू लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं करते,
1: जी
0: और सानू ये लगता है कि ये बच्चा साड़े कहने च नहीं है जो बार बार क्वेश्चन करता है या साड़े डिसीजन नू चैलेंज करता है।
1: जी
0: साड़े
1: बिल्कुल
0: कोले उहदे हर जवाब दा इक्को ही उहदे हर सवाल दा इक्को ही जवाब हुंदा है क्योंकि मैं क्या
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल
0: ये अपने आम चलता है,
1: ये सब तो ज्यादा पॉपुलर है
0: सब
1: मैनू
0: तो ज्यादा
1: लगता
0: पॉपुलर है। ठीक है,
1: है बिल्कुल
0: तुहानू सुन के किदां लग रहा है तुहानू
1: जी
0: आपे ही चल पता चल जाएगा कि ये किन्ना क होना चाहिए। ठीक
1: जी
0: है,
1: बिल्कुल
0: दूसरा है जिदे विच असी इहनू कहने अथॉरिटेटिव स्टाइल। ये पहले जिदी मैं गल की थी अथॉरिटेरियन है, सेकेंड है अथॉरिटेटिव जिहड़ा काफी हद तक बैलेंस्ड पेरेंटिंग है
1: जी
0: जिस दे विच असी बच्चियां नाल गलबात करते हैं, असी उन्हां दी गल सुनते हैं, असी अपना अपने डिस्कशन करते हैं, असी अपनी गल उन्हां दे सामने रखते हैं, असी
1: जी
0: पॉजिटिव नैगेटिव दे बारे गल करते हैं,
1: जी
0: कदे बच्चे तो असी कन्विंस हो जाने हैं, कदे बच्चा साढ़े तो हो
1: साढ़े तो
0: जाता
1: हो
0: है।
1: जाता है जी।
0: और इनू मेरी नज़र विच पॉजिटिव पेरेंटिंग है,
1: जी, टू वे कम्युनिकेशन तो
0: टू
1: है
0: वे
1: ना घटो घट।
0: कम्युनिकेशन है, बच्चे नू कदे भी ये नहीं लगता कि मेरी तो सुनते ही नहीं
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना।
1: जी
0: कई बार इदां भी हुंदा है कि तुसी अपनी ही गल मनवा लैंदे हो पर बच्चे नू एहसास नहीं हुंदा कि मेरे नाल जबरदस्ती हुई है,
1: बिल्कुल ठीक है
0: तुहाडा कन्विंस करन दा तरीका इस तरह दा हुंदा है,
1: जी,
0: दैट
1: बिल्कुल
0: इज अथॉरिटेटिव। ठीक
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: एक है थर्ड जिसके बारे में गल करना चाहनी है वो है परमिसिव पेरेंटिंग।
1: परमिसिव जी,
0: परमिसिव परमिसिव दे विच है कि तुसी छूट देती है बच्चे नू,
1: खुला ही छोड़ देता है कि जो मर्जी
0: हाँ
1: करे।
0: तुसी उस तो अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत घटा ली हैं,
1: जी
0: कोई फर्क नहीं पैंदा तू जो मर्जी कर।
1: जी जी जी
0: ठीक है, हर एक चीज उन्हों तुसी मुहैया कराते हो, उदियां डिमांड्स जड़ियां है तुसी ये नहीं देखते दे कि वो जेन्युइन है या नहीं, वो
1: बिल्कुल
0: पूरियां करना तुहानू लगदा जरूरी है और
1: जी
0: तुसी वो बोलदा और पूरियां करदे हो।
1: जी
0: इस
1: जी
0: तरह की पेरेंटिंग दे विच चाइल्ड स्पॉयल हुंदा है
1: जी
0: जो
1: जी
0: आम
1: जी
0: तौर पर देखा जाता है,
1: जी जी जी
0: क्योंकि
1: जी
0: उन्हों इंपॉर्टेंस नहीं समझाई जाती कि चीज़ा किस तरह आंदियां, किस किन्नी डिमांड होनी चाहिए है।
1: जो उन्हें
0: ओ
1: मुंह कड़े
0: हाँ,
1: वो बोल
0: उन्हों ये
1: गया।
0: नहीं लगता कि जरूरत के हिसाब न चीज़ होंगी है, उन्हों लगता जो दिल करे वो होंगी है,
1: जी, बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: इस तरह सीखता है। इस तरह के बच्चे फिर अगे जाके अकमुलेटिव बनते हैं, चीज़ा
1: जी,
0: कट्ठिया कर लेनिया चाहे लोड़ हो चाहे ना।
1: बस उन्होंने जमा करी जाना है सब
0: हाँ जी ठीक
1: कुछ
0: है,
1: बिल्कुल
0: फिर है अनइनवॉल्व पेरेंटिंग, अनइनवॉल्व जिथे पेरेंट्स
1: जी,
0: इनवॉल्व ही नहीं है,
1: कुछ भी नहीं कर रहे हो तो उन्होंने
0: फिजिकल प्रेजेंस नहीं है,
1: जी,
0: जरूरतां सारियां पूरियां हो रही हैं बच्चे दियां,
1: जी, बिल्कुल, पर वो उत्थे है नहीं।
0: उत्थे नहीं है ना,
1: जी
0: वो टाइम दे रहे हैं, जे वो
1: जी
0: हैगे भी है तो वो कुछ होर कर रहे हैं,
1: जी जी जी
0: बच्चे लई
1: जी
0: नहीं है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वो अपनियां कुछ एक्टिविटीज दे विच इन्ने बिजी है या उन्हां नूं ये लगदा ही नहीं कि ये जरूरी है, उन्हां नूं लगदा है जरूरतां पूरियां करनियां ही पेरेंटिंग है
1: जी
0: और वो
1: जी
0: सारियां जरूरतां पूरियां कर रहे हैं, और
1: बिल्कुल
0: बच्चे नूं भी एक टाइम तो बाद ये लगन लग जांदा है कि माँ बाप जिहड़े है वो जरूरतां पूरियां करन दा सोर्स है,
1: उन्हां दा होर कोई रोल नहीं,
0: वो जुड़ाव नहीं आता, एक कनेक्ट
1: बिल्कुल
0: जिहनूं असीं कहिंदे भावनात्मक जुड़ाव
1: वो नहीं
0: वो नहीं
1: बनेगा,
0: बनता
1: बिल्कुल
0: उन्हां नाल,
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
0: उन्हां लई इन्हां चीज़ां की इंपॉर्टेंस नहीं हुंदी कि इकट्ठे बह के डिनर करना,
1: जी जी
0: बच्चे की गल
1: जी
0: सुनना, स्कूल च की होया, उहदा
1: टाइम देना
0: होमवर्क
1: उन्हां नूं
0: देखना, इस चीज़ की
1: जी
0: कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ये है तो बेसिकली ये चार स्टाइल है,
1: जी जी जी
0: और मैनू लगता है कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है जिदे विच टू वे डिस्कशन है।
1: दोनों की गल हो रही
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: दोनों
0: वो उस
1: तेरा
0: दे हाँ
1: जी
0: जी
1: जी
0: उत्थे कनेक्ट जुड़ता है, बच्चे जुड़ते हैं,
1: जी जी
0: वो
1: जी
0: ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ।
1: ਜੀ

0: है। शुक्रिया जी।
1: हफ्ता भरी का महफल दे विच हुण मैं थोड़ी जान पछाण पंजाबी देश नवें उभर दे शायर तलविंदर शेरगिल जी नाल करवाउण जा रहे हां। तलविंदर शेरगिल जी जिला शहीद भगत सिंह नगर दी तहसील बंगा दे नेड़े वसदे पिंड गुणा चौर तो हन। बहुत वधिया शायर ने। इहदे नाल दी नाल उहनां दे इक लिखे हुए गीत पंजाब सिया नूं साडे गायक कृष्ण ही उन्हें गाया है जिहड़ा इस वेले पंजाबी दे स्रोतियां दी बड़ी पसंद बनिया होया है। ते इहो जे वधिया रचनावां दे रचनहारे तलविंदर शेरगिल नूं असीं दुआबा रेडियो दे मंझे निगाह जी आया कहिंदे हां।
2: हिफाजत अपने साहां दी एदां कर रहे हां, हिफाजत अपने साहां दी एदां कर रहे हां। जदों भी जंग होई है सदा ही कर रहे हां, जदों भी जंग होई है सदा ही कर रहे हां। तुहानू वहम है एवें अजल तों सौं रहे हां, तुहानू वहम है एवें अजल तों सौं रहे हां। असी तां नींद विच खाबां दी राखी कर रहे हां, असी तां नींद विच खाबां दी राखी कर रहे हां। कुताही तां पता लगे किवें रुस्से ने दरिया, कुताही तां पता लगे किवें रुस्से ने दरिया। असी तां खारियां खूहां चो पानी भर रहे हां, असी तां खारियां खूहां चो पानी भर रहे हां। किसे भी बुत घाड़े ने असानू रब ना कीता, किसे भी बुत घाड़े ने असानू रब ना कीता। जुगां तों ही असी राहां च पए पत्थर रहे हां, जुगां तों ही असी राहां च पए पत्थर रहे हां। मिले वरदान ही कारण असाडी मौत दे ने, मिले वरदान ही कारण असाडी मौत दे ने। खुशामद रब दी करनों तदे तां डर रहे हां, खुशामद रब दी करनों तदे तां डर रहे हां।
1: जो साड़ी काम महफल दे विच हाजिर हो रहे ने हैरी रंधावा जी। हैरी रंधावा जी भावें अपने किते वजों साइंस दे अध्यापक ने पर उन्हां दा शौक जिहड़ा आ ओह साहित नाल बहुत अवल्ला है। उन्हां नूं चंगा साहित पढ़ना ते चंगा साहित रचना ते गीत संगीत दा बहुत शौक है। इस बार ओह साड़ी काम महफल दे विच एक जगजीत सिंह जी दी गाई हुई गजल लेके हाजिर हो रहे ने। हैरी रंधावा जी थोड़ा स्वागत है।
3: हैरी रंधावा वालों पेशे खिदमत है शायर जगदीप हसरत जी दी एक बहुत प्यारी गजल। कौन मेरे दर ते दीवा तर गया,

ज्ञान दी जोत जगावण दे लई अंदर चात लगाउणा चंगा, मगर किसे दे लगण नालों अपना राह बनाउणा चंगा। मन बता दे पले दी खातर जावर नाल टकराउणा चंगा, उस खुदा दी रहमत अंदर मनुखता दे कम आउणा चंगा। हक सच लई अड़ना सिखो न अंदर वह के जरना चंगा, नाल अणख दे जीवन दे लई न ईन किसे दी परना चंगा। रल मिल के रहना सबने दुख सुख बिच।

कट बोलन दी आदत पाओ न बड़बड़ करना हुंदा चंगा। उलझलूल बोलन नालो चुप ताई अपनाउणा चंगा। बड़ियां दा

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे।

प्यार दिलिए खैर मना लैनी आगे सच के सिंह सरदार असी बाल अथरे हां साडियां मूड डिपेंड ने मत्ता असी वाले अतरे हां साडिया मूड डिपेंड ने मत्ता सदके मुड साडे दे आगे करके वेलियां सत्था सदके

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च 2 रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जु

जेकर मैनू मिलना होया मेरी मड़ी ते पिछले पैर जावी, नी मैथों वक्ख होण तो पहला मैनू देके थोड़ा जहर जावी।

सबे एक पासे मेरे ऐब खलोते दूजे पासे खुदाइयां सबे चलिए तां इक करम कमानी कड के कोई वैर जावी चलिए तां इक करम कमानी।

मैं सदा तेरे रादार उड़ारे हानी निकल गया हाँ रादार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मैं सदा तेरे रादार उड़ा रे हानी निकल गया हाँ रादार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मेरे कुप हो नेरे नू

0: दिन रात मेहनता कर दे हां, मजदूर पक्की सरकारां होण जे फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक्कां दे लई लड़दे हां। ऐ जिंदगी असी मजदूर तेरे जिउण लई मेहनत करदे हां, जिउण लई मेहनत करदे हां।
1: प्यारे श्रोतेओ, तुसीं हुणे कुलवंत सिंह सैदो जी दी कविता जिंदगी असीं मजदूर तेरे सुन के हटे हो, ते हुण मैं तुहाडे सन्मुख पेश करन दी खुशी लै रहा दिलशाद अली जी नूं। दिलशाद अली जी जिहड़े पंजाबी दे नवे उभर दे गायक हन, ते ओ बहुत वधिया सुरीली आवाज़ दे विच अपने गीत जिहड़े पेश करदे ने। साडी अज दी इस गाउंदी शाम दे विच ओ एक रचना लै के हाजिर हो रहे ने, करके मैनू याद रोया करेंगे। आस करदे हां कि इस रचना नूं तुसीं पूरा माणोगे, ते जिन्हां दे दिलां दी गल उन्होंने कीती आ ओह गल भी उन्हां तक पहुंच जाएगी। ते क्योंकि रोया किसी नूं दिल तो ही जा सकता है, हसण वेले तां बंदा ओपरा भी हस सकता है, पर रोण वेले उपरों नहीं रोया जा सकता, सिर्फ दिलों रोया जांदा है। जदों हाय कही जांदी है जां रोया जांदा है, ओह सिर्फ रूह तों, दिल तों ते दिमाग तों रोया जांदा है। ते दिलशाद अली जी साडे स्रोतियां लई अपना कलाम लैके हाजिर ने। दिलशाद अली जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दी गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
2: रचना गजल कुछ इस प्रकार है दोस्तों। करी करके मैनू याद रोया करेंगी तू, करी करके मैनू याद रोया करेंगी तू, पलिकानू हंजुआ दे नल पिगोया करेंगी तू, करी करके मैनू याद रोया करेंगी तू, हाय करी करके मैनू याद। बदलां दे विच बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, चेहरा मेरा फेर तैनू

अपने खातर दुनिया मरदी मिटदी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़ियां ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

0: पोर्टल दे थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना पैंदा है, ते बहुत ही ह्यूज अमाउंट दे विच जेड़े आईटीआई कोर्सेज अवेलेबल ने, जिदा पटियाला हो गया, लुधियाना हो गया, बरनाला हो गया, साडे सारे ही जिलियां दे विच, हरेक जिले विच घट्टो घट्ट दो आईटीआईज तां हैगी ही हैगियां ने मिनिमम,
1: अच्छा जी,
0: मैक्सिमम वड्डे जिलियां च ज्यादा आईटीआईज भी हो सकदियां ने, तां
1: ठीक है।
0: इजीली इहदे विच एडमिशन लई जा सकदी है बच्चियां वल्लों।
1: एक आईटीआई दे विच किन्ने क कोर्स चलते होंगे?
0: काफी सारे कोर्स तो चल जाते हैं, एक आईटीआई दे विच घट्टो घट्ट तुसी 8 तो 10 कोर्सेज दा लगा के चलो के चल जाते हैं, अगर वो वड्डी आईटीआई है
1: अच्छा
0: तां उहदे
1: जी,
0: विच काफी कोर्सेज चल पैंदे हैं। ते इहदे विच एक होर भी है चीज के जेकर बच्चे आईटीआई करन तो बाद उहनां दा इंटरस्ट थोड़ा बन जाता है
1: हाँ जी,
0: उद्योगिक खेत्र दे विच, तां उह अगे भी पढ़ सकते ने,
1: अच्छा जी,
0: जिवें जेकर कोई विद्यार्थी 10वीं तो बाद आईटीआई करदा है, ठीक है, आईटीआई 2 साल दी आईटीआई कंप्लीट, आईटीआई किसी भी ट्रेड च कर लैंदा है, मान लो फॉर एग्जांपल उहने उहदे विच कर ली है इलेक्ट्रिशियन च कर ली,
1: हाँ जी,
0: तां उस तो बाद उहदा इंटरेस्ट होर वध गया कि नहीं मैं होर लर्न करना है, होर ज्यादा पढ़ना है,
1: अच्छा
0: तां
1: जी,
0: उह उचेरी विद्या लई भी अप्लाई कर सकदा है, जिद्दां कि उह पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज आ जांदे आ साडे
1: अच्छा जी।
0: ए, हाँ जी, उन्हां लई भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चे, बच्चे अप्लाई कर सकते ने, वो
1: इस
0: भी
1: कोर्स
0: दो
1: के आधार
0: साल
1: पर, आईटीआई के कोर्स के आधार पर फिर पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा है
0: हाँ
1: उन्होंने
0: जी,
1: कोई छूट मिलती है सालों की उदी
0: नहीं
1: या उन्नी
0: वो
1: टाइम
0: दे,
1: दे करना पैंता है?
0: नहीं, ओदे विच उन्हूं नहीं छूट मिलेगी, वो तां उन्हूं कंप्लीट 2 साल दा ही करना पऊगा डिप्लोमा,
1: अच्छा जी,
0: ते पर जेकर वो डिप्लोमा तो बाद बीटेक कर सकता है, जिद्दां कि
1: अच्छा
0: अभी
1: जी,
0: सीधे तौर ते अगर कोई विद्यार्थी बीटेक करना चाह रहा है तो उहदे लई उहनूं नॉन मेडिकल लेना पऊगा,
1: हाँ
0: ते
1: जी,
0: उस तो
1: हाँ
0: बाद
1: जी,
0: जेईई मेन्स एडवांस वो टेस्ट देने पैणगे, फिर उहदी बीटेक च एडमिशन हुंदी है। बट जे कोई बच्चा आईटीआई दे थ्रू भी बीटेक च जाना चाहुंदा है तां भी वो जा सकदा है, इहदे नाल
1: अच्छा
0: की
1: जी,
0: होऊगा कि आईटीआई दा 2 साल दा कोर्स करन तो बाद ओह डिप्लोमा करूगा पॉलीटेक्निक दा 2 साल दा, ओह तो बाद ओहदी जेड़ी लेटरल एंट्री हो जूगी बीटेक सेकंड ईयर दे विच,
1: अच्छा जी,
0: हाँ जी, ओह जेड़े भी ओहने ट्रेड दे विच कीती हुई है,
1: हाँ
0: मान लो ने
1: जी,
0: इलेक्ट्रिशियन च कीती है, तां उसनू उस अकॉर्डिंगली जेड़ा भी ओहदा स्ट्रीम बनदा होगा ओहनू बीटेक च एडमिशन मिल जाएगी, ओहदे लई ओहनू
1: ठीक है,
0: जेईई मेन्स ते एडवांस देने दी जरूरत नहीं पौगी,
1: ओके ओके। अच्छा,
0: हाँ जी।
1: जिहड़े ये कोर्स आप गल शुरू की पहला भी की सी भी इन्हां नूं प्राइवेट खेत्र दे विच नौकरियां मिलदियां जां सरकारी?
0: हाँ जी बिल्कुल, इहदे बहुत ज्यादा स्कोप है आईटीआई दा,
1: हाँ जी,
0: जेहड़े बच्चे आईटीआई होल्डर्स ने उन्हां दा बड़ा स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर च भी हैगा,
1: हाँ
0: गवर्नमेंट
1: जी,
0: सेक्टर दे विच भी हैगा, ते मोर ओवर ओहो अपना खुद दा बिजनेस भी बना सकते ने,
1: अच्छा
0: ते
1: जी,
0: इस तो इलावा विदेशां दे विच भी रोजगार काफी हैगा है आईटीआई स्टूडेंट्स दे लई।
1: अच्छा जी,
0: ते जदों आपां प्राइवेट सेक्टर दी गल करदे आं तां जिदां ही मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जिहड़ा साडा
1: हाँ जी,
0: मैन्युफैक्चरिंग दे विच जिहड़ियां आ गईयां चीजां, ओह सारे जिन्नियां भी कंपनीज आ गईयां साडियां ओहदे विच बच्चे जाके जिदां टेक्सटाइल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एग्रीकल्चर, ठीक है, एनर्जी, इदां दे काफी प्राइवेट सेक्टर दे विच जिहड़ियां कंपनीज काम कर रहीयां ने उहनां दे विच काफी डिमांड हुंदी है, वेल्डर दी,
1: अच्छा जी,
0: इलेक्ट्रिशियंस दी, रेफ्रिजरेशन हो गया, एयर कंडीशनर जेडे मैकेनिक्स हैं उन्हां दी बहुत ज्यादा डिमांडिंग ए ट्रेड्स ने,
1: अच्छा जी,
0: जिन्हां दी आईटीआई दे प्राइवेट सेक्टर च बड़ी डिमांड रहंदी है,
1: ठीक है,
0: ते ए कंप्लीटली इंटरव्यू बेसिस ते हुंदा है, ते प्लस उन्हां दी जेड़ी हैंड स्किल्स ने, उन्हां दा जिन्ना हैंड स्किल्स होगा, उन्हां नू एक्सपीरियंस होगा किन्ना, तां उस बेसिस ते उन्हां नू नौकरी मिल जाती है।
1: तुसी गल विदेशां दी कीती है,
0: हाँ
1: विदेशां दे
0: जी
1: विच अग्गे पढ़न लई मौके मिलदे है जां उहनां नूं अग्गे इस कोर्स दे आधार ते उत्थे जाके कम मिल जांदा है?
0: नहीं, कम मिल जांदा है बेशक उन्हां नू रोजगार मिलदा है विदेशां दे विच,
1: अच्छा जी,
0: जिवें असीं जदों गल करदे आं जिहड़े आईटीआई होल्डर्स ने इन्हां दा मिडल ईस्ट कंट्रीज जिन्हां नू असीं गल्फ कंट्रीज भी बोल दिंदे आं उन्हां दे विच बड़ी डिमांड है, जिदां सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया,
1: हाँ
0: बहरीन
1: जी,
0: हो गया, कतार हो गया, ओमान, इदां दे जिहड़े गल्फ कंट्रीज है उन्हां दे विच बड़ी ज्यादा मात्रा दे विच वैकेंसियां निकलदियां ने
1: अच्छा जी,
0: आईटीआई होल्डर्स दे लई, तां उहदे लई इह बच्चे जिहड़े